0: एफएम अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ सदाबहार तथा नैतिक भजनहरूको संग्रह कार्यक्रम अभ्युदय।
1: नमस्कार, स्वागत अनि अभिवादन कार्यक्रम अभ्युदयमा। म प्रस्तोता युवेन्द्र। आदरणीय श्रोता, अब म यहाँसँग केही सुमधुर एवं सदाबहार भजनका साथमा रहनेछु।

दर्शन बिन मर जाऊंगा दर्शन दे दे मां, मैं अपने लहू तर जाऊंगा दर्शन दे दे मां।

एफएम अध्यात्म ज्योति को प्रस्तुति कार्यक्रम भजन सुमिरन। प्रत्येक शनिश्चरबार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्जमा। अध्यात्म ज्योतिको यो प्रस्तुतिका प्रायोजक शुद्धताको सुनौलो परम्परा जय माता दी गोल प्यालेस शुक्रपथ न्यू रोड। प्रत्येक आइतबार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म यहाँहरूकै शुभ सन्देश शुभेच्छा र प्रेरक प्रसङ्गका साथमा कार्यक्रम शुभ प्रभात सुन्न सक्नुहुनेछ मात्र एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्जमा। कार्यक्रम भजन दीपाञ्जलि प्रत्येक सोमबार सुमधुर भजन का साथ में बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज में। यस कार्यक्रम का प्रायोजक उच्च स्तरीय प्रविधि द्वारा स्वदेशमै निर्मित चाँदी का हर एक प्रकार का सामग्री का लागि प्रसिद्ध सिल्वर स्टेट धर्मपथ न्यू रोड काठमाडौँ। कार्यक्रम भजनाञ्जली प्रत्येक मंगलबार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्जमा।

सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए।

0: फूलों में खारों में पतझर बहारों में मैं ना कभी डगमगाऊं।
1: फूलों में खारों में पतझर बहारों में मैं ना कभी डगमगाऊं।

तो तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण

0: जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी।
1: नमस्ते आदरणीय श्रोता, यो सदाभार भजनका साथ साथै कार्यक्रम अभिधेयको निर्धारित समय यही पूरा भएको हुँदा अब अहिलेलाई छुट्टिने समय। कार्यक्रमबाट प्रस्तुता म युवेन्द्र बिदा माग्दछु। आज शनि सरबार, यहाँको दिन अत्यन्त रमाइलो रहोस्, यही कामनाका साथमा नमस्कार।

0: FM अध्यात्म ज्योति शांति रेडियो
1: भजन सुमिरन सुमिरन अध्यात्म ज्योति को यो प्रस्तुति का प्रायोजक शुद्धता को सुनौलो परंपरा जय माता दी गोल पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: सिल्वर पैलेस विश्वसनीय सुरक्षित र भर पर्दो स्वदेशी श्रम र सिपबाट निर्मित आकर्षक डिजाइन का मिसावट रहित चांदी का एक्सक्लूसिव गहना लगायत भाड़ाहरू विवाह लगायत अन्य अवसर का लागि चाहिने चांदी का सामानहरूको लागि सिल्वर पैलेस न त ठगिने डर न मिसावट

तो आदरणीय श्रोता आज को निमित्त कार्यक्रम भजन सुमिरन को समय ये नई जय माता दी गोल पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड को प्रायोजन में रहकर इस कार्यक्रम म सभ्यता तिवारी हमारा प्राविधिक सहयोगी एवं यतिन्जेल सम्म को हम प्रस्तुति सुनिदिनु हुने यहाँलाई धन्यवाद दिदै बिदा माग्दछु। अध्यात्म ज्योति को इस पछाड़ी को प्रस्तुति में प्रस्तुत युवेन्द्र को साथ में यहाँ रहनुहुनेछ। कार्यक्रम सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्कार।

एक बार कन्हैया अपने घर में माखन चोरी कर रहे थे और माँ ने देख लिया। बाद में माँ अचानक पूछ बैठी, कन्हैया अपने घर में मिठाई मिश्री दूध दही सब तो है, फिर तू हमेशा माखन चोरी क्यों करता है? और कुछ क्यों नहीं चुराता? तो कन्हैया

कि चलना सीख रहे हैं, ठुमक ठुमक कर चलते हैं, लड़खड़ा कर गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, चलने का प्रयास करते हैं। देखिए ये भाव गाकर किस प्रकार दिखाया जा सकता है।

किसी वस्तु से करना चाहते। अन्य कोई कवि होता तो कह देता, भगवान राम के मुख जैसा कमल है या चंद्रमा है या सूर्य है, किसी भी तेज वस्तु या सुंदर वस्तु से तुलना कर देता। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को कोई ऐसी वस्तु नजर ही नहीं आ रही

0: कार्यक्रम अध्यात्म ज्योतिको अबको प्रस्तुति कार्यक्रम ओसो प्रवचन ओसो सन्देश
1: पहला सूत्र। अष्टावक्र ने कहा, तू सब का एक दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है। यह सूत्र अत्यंत बहुमूल्य है। एक एक शब्द इसका ठीक से समझे। तू सबका एक दृष्टा है, एको दृष्टासि सर्वस्य, और सदा सचमुच मुक्त है। साधारणतः हमें अपने जीवन का बोध दूसरों की आंखों से मिलता है। हम दूसरों की आंखों का दर्पण की तरह उपयोग करते हैं, इसलिए हम दृष्टा को भूल जाते और दृश्य बन जाते। स्वाभाविक भी है, छोटा बच्चा पैदा हुआ, उसे अभी अपना कोई पता नहीं, वो दूसरों की आंखों में झांक के ही देखेगा कि मैं कौन हूं। अपना चेहरा तो दिखाई पड़ता नहीं, दर्पण खोजना होगा। जब तुम दर्पण में अपने को देखते हो तो तुम दृश्य हो गए, दृष्टा ना रहे। तुम्हारी अपने से पहचान ही कितनी है, उतनी जितना दर्पण ने कहा। मां कहती है बेटा सुंदर है, तो बेटा अपने को सुंदर मानता है। शिक्षक कहते हैं स्कूल में बुद्धिमान हो, तो व्यक्ति अपने को बुद्धिमान मानता है। कोई अपमान कर देता है, कोई निंदा कर देता है, तो निंदा का स्वर भीतर समा जाता है। इसलिए तो हमें अपना बोध बड़ा भ्रामक मालूम होता है, क्योंकि अनेक स्वर से मिलके बना है, विरोधी स्वरों से मिलके बना है। किसी ने कहा सुंदर हो और किसी ने कहा तुम और सुंदर, शकल तो देखो आईने में। दोनों स्वर भीतर चले गए, द्वंद पैदा हो गया। किसी ने कहा बड़े बुद्धिमान हो और किसी ने कहा तुम जैसा बुद्धू आदमी नहीं देखा। दोनों स्वर भीतर चले गए, दोनों भीतर जुड़ गए, बड़ी बेचैनी पैदा हो गई, बड़ा द्वंद पैदा हो गया। इसलिए तो तुम निश्चित नहीं हो कि तुम कौन हो। इतनी भीड़ तुमने इकट्ठी कर ली है मतों की, इतने दर्पणों में झांका है, और सभी दर्पणों ने अलग अलग खबर दी। दर्पण तुम्हारे संबंध में थोड़ी खबर देते, दर्पण अपने संबंध में खबर देते। तुमने दर्पण देखे होंगे जिनमें तुम लंबे हो जाते, दर्पण देखे होंगे जिनमें तुम मोटे हो जाते, दर्पण देखे होंगे जिनमें तुम अति सुंदर दिखने लगते, दर्पण देखे होंगे जिनमें तुम अति कुरूप हो जाते, अष्टावक्र हो जाते। दर्पण में जो झलक मिलती है वो तुम्हारी नहीं है, दर्पण के अपने स्वभाव की है। विरोधी बातें इकट्ठी होती चली जाती, इन्हीं विरोधी बातों के संग्रह का नाम तुम समझ लेते हो मैं हूं। इसलिए तुम सदा कपते रहते हो, डरते रहते हो। लोक मत का कितना भय होता है, कहीं लोग बुरा ना सोचे, कहीं लोग ऐसा ना समझ ले कि मैं मूढ़ हूं, कहीं ऐसा ना समझ ले कि मैं असाधु हूं। लोग कहीं ऐसा ना समझ लें, क्योंकि लोगों के द्वारा ही हमने अपनी आत्मा निर्मित की है। गुरजीफ अपने शिष्यों से कहता था, अगर तुम्हें आत्मा को जानना हो तो तुम्हें लोगों को छोड़ना होगा। ठीक कहता था, सदियों से यही सदगुरुओं ने कहा है। अगर तुम्हें स्वयं को पहचानना हो तो तुम्हें दूसरों की आंखों में देखना बंद कर देना होगा। मेरे देखे बहुत से खोजी सत्य के अन्वेषक समाज को छोड़कर चले गए। उसका कारण ये नहीं था कि समाज में रह के सत्य को पाना असंभव है, उसका कारण इतना ही था समाज में रह के स्वयं की ठीक ठीक छवि जाननी बहुत कठिन है। यहां लोग खबर दिए ही चले जाते हैं कि तुम कौन हो, तुम पूछो न पूछो, सब तरफ से झलकें आती ही रहती हैं कि तुम कौन हो। और हम धीरे धीरे इन्हीं झलकों के लिए जीने लगते। मैंने सुना एक राजनेता मरा, उसकी पत्नी 2 वर्ष पहले मर गई थी। जैसे ही राजनेता मरा, उसकी पत्नी ने उस दूसरे लोक के द्वार पर उसका स्वागत किया, लेकिन राजनेता ने कहा भी मैं भीतर ना आऊंगा, जरा मुझे मेरी अर्थी के साथ राजघाट तक हो आने दो। पत्नी ने कहा आप क्या सार है, वहां तो देह पड़ी रह गई, मिट्टी है। उसने कहा कि मिट्टी नहीं, इतना तो देख लेने दो कितने लोग विदा करने आए। राजनेता और उसकी पत्नी भी अर्थी के साथ साथ किसी को तो दिखाई ना पड़ते थे, पर उनको अर्थी दिखाई पड़ती थी। चले, बड़ी भीड़ थी, अखबार नवीस थे, फोटोग्राफर थे, झंडे झुकाए गए थे, फूल सजाए गए थे। मिलिट्री के ट्रक पर रखी अर्थी थी, बड़ा सम्मान दिया जा रहा था, तोपें आगे पीछे थी, सैनिक चल रहे थे। गदगद हो उठा राजनेता। पत्नी ने कहा इतने प्रसन्न क्या हो रहे हो। उसने कहा अगर मुझे पता होता कि मरने पर इतनी भीड़ आएगी तो मैं पहले कभी का मर गया होता, तो हम पहले ही ना मर गए होते, इतने दिन क्यों राह देखते। इतनी भीड़ मरने पर आए इसी के लिए तो जिए, भीड़ के लिए लोग जीते हैं, भीड़ के लिए लोग मरते हैं। दूसरे क्या कहते हैं ये इतना मूल्यवान हो गया है कि तुम पूछते ही नहीं कि तुम कौन हो। दूसरे क्या कहते हैं उन्हीं की कतरन छांट छांट के इकट्ठी अपनी तस्वीर बना लेते। वो तस्वीर बड़ी डमाडोल रहती क्योंकि लोगों के मन बदलते रहते, और फिर लोगों के मन ही नहीं बदलते रहते, लोगों के कारण भी बदलते रहते। कोई आके तुमसे कह गया कि आप बड़े साधु पुरुष हैं, उसका कुछ कारण है, खुशामद कर गया, साधु पुरुष तुम्हें मानता कौन है। अपने को छोड़ के संसार में कोई किसी को साधु पुरुष नहीं मानता। तुम अपनी ही सोचो ना, तुम अपने को छोड़ के किसको साधु पुरुष मानते हो। कभी कभी कहना पड़ता है, जरूरतें, जिंदगी है, अड़चने, झूठे को सच्चा कहना पड़ता है, दुर्जन को सज्जन कहना पड़ता है, कुरूप को सुंदर की तरह प्रशंसा करनी पड़ती, स्तुति करनी पड़ती, खुशामद करनी पड़ती। खुशामद इसलिए तो इतनी बहुमूल्य है, खुशामद के चक्कर में लोग क्यों आ जाते। मूल से मूल आदमी से भी कहो कि तुम महाबुद्धिमान हो तो वो भी इनकार नहीं करता, क्योंकि उसको अपना तो कुछ पता नहीं। तुम जो कहते हो वही सुनता है, तुम जो कहते हो वही हो जाता है। तो उनके कारण बदल जाते, कोई कहता है सुंदर हो, कोई कहता है असुंदर हो, कोई कहता है भले हो, कोई कहता है बुरे हो, ये सब इकट्ठा होता चला जाता है। और इन विपरीत मतों के आधार पर तुम अपनी आत्मा का निर्माण कर लेते हो। तुम ऐसी बैलगाड़ी पर सवार हो जिसमें सब तरफ बैल जुते, जो सब दिशाओं में एक साथ जा रही, तुम्हारे अस्थि पंजर ढीले हुए जा रहे, तुम सिर्फ घसीटते हो, कहीं पहुंचते नहीं, पहुंच सकते नहीं। पहला सूत्र है आज का, तू सबका एक दृष्टा है और तू सदा सचमुच मुक्त है। व्यक्ति दृश्य नहीं है, दृष्टा है। दुनिया में 3 तरह के व्यक्ति हैं, वे जो दृश्य बन गए, वे सबसे ज्यादा अंधेरे में। दूसरे वे जो दर्शक बन गए, वे पहले से थोड़े ठीक है लेकिन कुछ बहुत ज्यादा अंतर नहीं। तीसरे वे जो दृष्टा बन गए। तीनों को अलग अलग समझ लेना जरूरी है। जब तुम दृश्य बन जाते हो तो तुम वस्तु हो गए, तुमने आत्मा खो दी। इसलिए राजनेता में आत्मा को पाना मुश्किल है, अभिनेता में आत्मा को पाना मुश्किल है। वो दृश्य बन गया है, वो दृश्य बनने के लिए ही जीता है। उसकी सारी कोशिश ये है कि मैं लोगों को भला कैसे लगूं, सुंदर कैसे लगूं, श्रेष्ठ कैसे लगूं। श्रेष्ठ होने की चेष्टा नहीं है, श्रेष्ठ लगने की चेष्टा है, कैसे श्रेष्ठ दिखाई पड़ूं। तो तो जो दृश्य बन रहा है वो पाखंडी हो जाता है, वो ऊपर से मुखौटे ओढ़ लेता है, ऊपर से सब आयोजन कर लेता है, भीतर सड़ता जाता है। फिर दूसरे वे लोग हैं जो दर्शक बन गए, उनकी बड़ी भीड़। स्वभावतः पहले तरह के लोगों के लिए दूसरे तरह के लोगों की जरूरत है, नहीं तो दृश्य बनेंगे लोग कैसे। कोई राजनेता बन जाता है फिर ताली बजाने वाली भीड़ मिल जाती, तो दोनों बड़ा मेल बैठ जाता है। नेता हो तो अनुयायी भी चाहिए, कोई नाच रहा हो तो दर्शक भी चाहिए, कोई गीत गा रहा हो तो सुनने वाले भी चाहिए। तो कोई दृश्य बनने में लगा है, कुछ दर्शक बनकर रह गए, दर्शकों की बड़ी भीड़। पश्चिम के मनोवैज्ञानिक बड़े चिंतित हैं क्योंकि लोग बिल्कुल ही दर्शक होकर रह गए। फिल्म देखाते हैं, रेडियो खोल लेते हैं, टेलीविजन के सामने बैठ जाते हैं घंटों। अमेरिका में करीब करीब औसत आदमी 6 घंटे रोज टेलीविजन देख रहा है। फुटबॉल का मैच हो देखाते हैं, कुश्ती हो रही हो तो देखाते हैं, क्रिकेट हो तो देखाते हैं, ओलंपिक हो तो देखाते हैं। बस सिर्फ देखने वाले रह गए, खड़े हैं दर्शक की तरह, राह के किनारे राहगीर। जीवन का जुलूस निकल रहा है, तुम देख रहे हो। कुछ हैं जो जीवन के जुलूस में सम्मिलित हो गए, वो जरा कठिन धंधा है, वहां बड़ी प्रतियोगिता है। जुलूस में सम्मिलित होना जरा मुश्किल है, बड़े संघर्ष और बड़े आक्रमण की जरूरत है। लेकिन जुलूस को देखने वालों की भी जरूरत है, वो किनारे खड़े देख रहे हैं। अगर वो ना हो तो जुलूस भी विदा हो जाए। तुम थोड़ा सोचो, अगर अनुयायी न चले पीछे तो नेताओं का क्या हो? अकेले झंडा ऊंचा रहे हमारा, बड़े बुद्धू मालूम पड़े, बड़े पागल मालूम पड़े। राह किनारे लोग चाहिए, भीड़ चाहिए, तो पागलपन भी ठीक मालूम पड़ता है। तुम थोड़ा सोचो, कोई देखने ना आए और क्रिकेट का मैच होता रहे, मैच के प्राण निकल गए। मैच के प्राण मैच में थोड़ी, वो देखने जो लाखों लोग इकट्ठे होते हैं उनमें। और आदमी अद्भुत है, आदमी तो घुड़दौड़ देखने भी जाते हैं। ये पूरा कोरेगांव पार घुड़दौड़ देखने वालों की बस्ती, ये बड़े हैरानी की बात है। आदमी को दौड़ाओ, कोई घोड़ा देखने नहीं आता। घोड़े दौड़ते हैं, आदमी देखने जाते हैं। ये घोड़ों से भी गई बीती स्थिति हो गई। देखते ही देखते जिंदगी बीत जाती। दर्शक प्रेम करते नहीं तुम, फिल्म में प्रेम चलता है वो देखते हो। नाचते नहीं तुम, कोई नाचता है तुम देखते हो। गीत तुम नहीं गुनगुनाते, कोई गुनगुनाता है तुम सुनते हो। तुम्हारा जीवन अगर नपुंसक हो जाए, अगर उसमें से सब जीवन ऊर्जा खो जाए तो आश्चर्य क्या। तुम्हारे जीवन में कोई गति नहीं है, कोई ऊर्जा का प्रवाह नहीं है, तुम मुर्दे की भांति बैठे हो। बस तुम्हारा कुल काम इतना है कि देखते रहो, कोई दिखाता रहे तुम देखते रहो। ये दो ही की बड़ी संख्या है दुनिया में, दोनों एक दूसरे से बंधे। मनोवैज्ञानिक कहते हैं दुनिया में हर बीमारी के दो पहलू होते हैं। दुनिया में कुछ लोग जिनको मनोवैज्ञानिक कहते हैं मैसोचिस्ट, पर स्वदुखवादी, वो अपने को सताते हैं। और दुनिया में दूसरा एक वर्ग है जिसको मनोवैज्ञानिक कहते हैं सैडिस्ट, पर दुखवादी, दूसरे को सताते। दोनों की जरूरत है, इसलिए दोनों जब मिल जाते हैं तो बड़ा राग रंग चलता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर पति दूसरों को सताने वाला हो और स्त्री खुद को सताने वाली हो तो इससे बढ़िया जोड़ा और दूसरा नहीं होता। स्त्री अपने को सताने में मजा लेती है, पति दूसरे को सताने में मजा लेता है। राम मिलाई जोड़ी, कोई अंधा कोई कोढ़ी, मिल गए, बिल्कुल मिल गए, बिल्कुल ठीक बैठ गए। हर बीमारी के दो पहलू होते, दृश्य और दर्शक एक ही बीमारी के दो पहलू। स्त्रियां आमतौर से दृश्य बनना पसंद करती, पुरुष आमतौर से दर्शक बनना पसंद करते। मनोविज्ञानकों की भाषा में स्त्रियों को वो कहते हैं एग्जीबिशनिस्ट, नुमाइशी। उनका सारा रस नुमाइश बनने में। मुल्ला नसरुद्दीन मक्खियां मार रहा था, बहुत मक्खियां हो गई, तो पत्नी ने कहा इनको हटाओ। आईने के पास मक्खियां मार रहा था, बोला कि एक जोड़ा, दो मादाएं बैठी। पत्नी ने कहा हाथ धोगी, तुमने पता कैसे चलाया कि नर हैं कि मादाएं? उन्होंने कहा घंटे भर से आईने पे बैठी हैं, मादाएं होनी चाहिए, नर को आईने के पास क्या करना। स्त्रियां आईने से छूट ही नहीं पाती, आईना मिल जाए तो चुंबक की तरह खींच लेता है। सारी जिंदगी आईने के सामने बीत रही है, कपड़ों में, वस्त्रों में, सजावट में, श्रृंगार में। और बड़ी हैरानी की बात है, इतने सज धज के निकलती हैं, फिर कोई धक्का दे तो नाराज होती, कोई धक्का ना दे तो भी दुखी होंगी, क्योंकि धक्का देने के लिए इतना सज धजने का इंसान था, नहीं तो प्रयोजन क्या था। पति के सामने स्त्रियां नहीं सजती, पति के सामने तो वो भैरवी बनी बैठी रहती, क्योंकि वहां धक्का मुक्का समाप्त हो चुका है। लेकिन घर के बाहर जाए तो बड़ी तैयारी करते हैं, वहां दर्शक मिलेंगे, वहां दृश्य बनना है। मनुष्य को, पुरुष को मनोवैज्ञानिक कहते हैं वोयूर। उसकी सारी नजर देखने में, उसका रस देखने में। स्त्रियों को देखने में रस नहीं, दिखाने में रस। इसलिए तो स्त्री पुरुषों का जोड़ा बैठ जाता, बीमारी के दो पहलू बिल्कुल एक साथ बैठ जाते। और ये दोनों ही अवस्थाएं रुग्ण है। अष्टावक्र कहते हैं मनुष्य का स्वभाव दृष्टा का है, न तो दृश्य बनना है और न दर्शक। अब कभी तुम ये भूल मत कर लेना, कई बार मैंने देखा है कुछ लोग ये भूल कर लेते हैं, वो समझते हैं दर्शक हो गए तो दृष्टा हो गए। इन दोनों शब्दों में बड़ा बुनियादी फर्क है, भाषा कोश में शायद फर्क ना हो, वहां दर्शक और दृष्टा का एक ही अर्थ होगा, लेकिन जीवन के कोष में बड़ा फर्क है। दर्शक का अर्थ है दृष्टि दूसरे पर है, और दृष्टा का अर्थ है दृष्टि अपने पर है। दृष्टि देखने वाले पर है तो दृष्टा, और दृष्टि दृश्य पर है तो दर्शक। बड़ा क्रांतिकारी भेद है, बड़ा बुनियादी भेद है। जब तुम्हारी नजर दृश्य पर अटक जाती है और तुम अपने को भूल जाते हो तो दर्शक, जब तुम्हारी दृष्टि से सब दृश्य विदा हो जाते हैं तुम ही तुम रह जाते हो, जागरण मात्र रह जाता, होश मात्र रह जाता, तो दृष्टा। तो दर्शक तो तुम तब हो जब तुम बिल्कुल विस्मृत हो गए, तुम अपने को भूल ही गए, नजर लग गई वहां सिनेमा हॉल में बैठे हो, 3 घंटे के लिए अपने को भूल जाते हो, याद ही नहीं रहती कि तुम कौन हो, दुख सुख चिंताएं सब भूल जाती। इसलिए तो भीड़ वहां पहुंचती, जिंदगी में बड़ा दुख है, चिंता है, परेशानी, कहीं चाहिए भूलने का उपाय, लोग बिल्कुल एकाग्रचित्त हो जाते, बस ध्यान उनका लगता ही फिल्म में, वहां देखते हैं पर्दे पे कुछ भी नहीं है, छायाएं डोल रही, मगर लोग बिल्कुल एकाग्रचित्त है, बीमारी भूल जाती, चिंता भूल जाती, बुढ़ापा भूल जाता, मौत भी आती हो तो भूल जाती। लेकिन दृष्टा नहीं हो गए हो तुम फिल्म में बैठ के, दर्शक हो गए, भूल ही गए अपने को, स्मरणी ना रहा कि मैं कौन। ये जो देखने की ऊर्जा है भीतर, इसकी तो स्मृति ही खो गई, बस सामने दृश्य है उसी पर अटक गए, उसी में सब भांति डूब गए। दर्शक होना एक तरह का आत्मविस्मरण, और दृष्टा होने का अर्थ है सब दृश्य विदा हो गए, पर्दा खाली हो गया, अब कोई फिल्म नहीं चलती वहां, न कोई विचार रहे, न कोई शब्द रहे, पर्दा बिल्कुल शून्य हो गया, कोरा और शुभ्र सफेद, देखने को कुछ भी न बचा, सिर्फ देखने वाला बचा। और अब देखने वाले में डुबकी लगी तो दृष्टा। दृश्य और दर्शक, मनुष्यता इनमें बटी। कभी कभी कोई दृष्टा होता है, कोई अष्टावक्र, कोई कृष्ण, कोई महावीर, कोई बुद्ध, कभी कभी कोई जागता और दृष्टा होता है। तू सबका एक दृष्टा है, और इस सूत्र की खूबियां ये हैं कि जैसे ही तुम दृष्टा हुए तुम्हें पता चलता है दृष्टा तो एक ही है संसार में, बहुत नहीं, दृश्य बहुत है, दर्शक बहुत है, अनेकता का अस्तित्व ही दृश्य और दर्शक के बीच है, वो झूठ का जाल है, दृष्टा तो एक ही है। ऐसा समझो कि चांद निकला, पूर्णिमा का चांद निकला, नदी पोखर में, तालाब सरोवर में, सागर में, सरिताओं में, सब जगह प्रतिबिंब बने। अगर तुम पृथ्वी पर घूमो और सारे प्रतिबिंबों का अंकन करो तो करोड़ों अरबों खरबों प्रतिबिंब मिलेंगे, लेकिन

तो वैराग्य। अब कोई इच्छा नहीं होती कोई देखे और कहे कि सुंदर हो, सज्जन हो, संत हो, साधु हो। अगर इतनी भी इच्छा भीतर रह गई कि लोग तुम्हें साधु समझें, तो अभी तुम पुराने जाल में पड़े हो। अगर इतनी भी आकांक्षा रह गई मन में कि लोग तुम्हें संत पुरुष समझें, तो तुम अभी पुराने जाल में पड़े हो। अभी संसार नहीं छूटा, संसार ने नया रूप लिया, नया ढंग पकड़ा, लेकिन यात्रा पुरानी ही जारी है, सातत्य पुराना ही जारी। क्या करोगे देखकर? खूब देखा, क्या पाया? क्या करोगे दिखाकर? कौन है यहां जिसको दिखा के कुछ मिलेगा? इन दोनों से पार हटकर, द्वंद से हटकर जो दृष्टा में डूबता है तो पाता है कि एक ही है। ये पूर्णिमा का चांद तो एक ही है। ये सरोवरों, पोखरों, तालाबों, सागरों में अलग अलग दिखाई पड़ता था, अलग अलग दर्पण थे इसलिए दिखाई पड़ता था। मैंने सुना है एक राजमहल था, सम्राट ने महल बनाया था सिर्फ दर्पणों से, दर्पण ही दर्पण थे अंदर, कांच महल था। एक कुत्ता, सम्राट का खुद का कुत्ता रात बंद हो गया, भूल से अंदर रह गया। उस कुत्ते की अवस्था तुम समझ सकते हो क्या हुई होगी। वही आदमी की अवस्था है, उसने चारों तरफ देखा, कुत्ते ही कुत्ते थे, हर दर्पण में कुत्ता था। वो घबरा गया, वो भौंका। जब आदमी भयभीत होता है तो दूसरे को भयभीत करना चाहता है, शायद दूसरा भयभीत हो जाए तो अपना भय कम हो जाए। वो भौंका, लेकिन स्वभावतः वहां तो दर्पण ही थे, दर्पण दर्पण से कुत्ते भौंके। आवाज उसी पर लौट आई, अपनी ही प्रतिध्वनि थी। रात भर भौंकता रहा और भागता और दर्पणों से जूझता, लहूलुहान हो गया। वहां कोई भी न था, अकेला था। सुबह मरा हुआ पाया गया, सारे भवन में खून के चिन्ह थे। उसकी कथा आदमी की कथा है। यहां दूसरा नहीं, यहां अन्य है ही नहीं, जो है अनन्य है। यहां एक है, लेकिन उस एक को जब तक तुम भीतर से ना पकड़ लोगे ख्याल में ना आएगा। तू सबका एक दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है। अष्टावक्र कहते हैं सचमुच मुक्त है, इसे कल्पना मत समझना। आदमी बहुत अद्भुत है। आदमी सोचता है कि संसार तो सत्य है और ये सत्य की बातें सब कल्पना है। दुख तो सत्य मानता है, सुख की कोई किरण उतरे तो मानता है कोई सपना है, कोई धोखा है। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं बड़ा आनंद मालूम हो रहा है, शक होता है ये कहीं भ्रम तो नहीं। दुख में इतने जन्मों जन्मों तक रहे कि भरोसा ही खो गया कि आनंद हो भी सकता है। आनंद असंभव मालूम होने लगा है, रोने का अभ्यास ऐसा हो गया है, दुख का ऐसा अभ्यास हो गया है, कांटों से ऐसी पहचान हो गई कि फूल अगर दिखाई भी पड़े तो भरोसा नहीं आता, लगता है सपना है, आकाश कुसुम, होगा नहीं, हो नहीं सकता। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं सचमुच मुक्त है, व्यक्ति बंधा नहीं। बंधन असंभव है क्योंकि केवल परमात्मा है, केवल एक है। न तो बांधने को कुछ है, न बंधने को कुछ है। तू सदा सचमुच मुक्त है। इसलिए अष्टावक्र जैसे व्यक्ति कहते हैं कि इसी क्षण चाहे तो मुक्त हो सकता है, क्योंकि मुक्त है ही। मुक्ति में कोई बाधा नहीं, बंधन कभी पड़ा नहीं, बंधन केवल माना हुआ है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है। एको दृष्टासी सर्वस्य, मुक्त प्रायो असि सर्वदा, अयमेव ही ते बंधो दृष्टारम पश्य सीतरम। एक ही बंधन है कि तू अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है।
और

0: एक ही मुक्ति है कि तू अपने को दृष्टा जान ले। तो इस प्रयोग को थोड़ा करना शुरू करें। देखते हैं, वृक्ष के पास बैठे हैं, वृक्ष दिखाई पड़ रहा है, तो धीरे धीरे वृक्ष को देखते देखते उसको देखना शुरू करें जो वृक्ष को देख रहा है। जरा से हेरफेर की बात है, साधारणता चेतना का तीर वृक्ष की तरफ जा रहा है, इस तीर को दोनों तरफ जाने दें, इसका फल दोनों तरफ कर लें, वृक्ष को भी देखें और साथ ही चेष्टा करें उसको भी देखने की जो देख रहा है। देखने वाले को न भूलें, देखने वाले को पकड़ पकड़ लें, बार बार भूलेगा, पुरानी आदत है, जन्मों की आदत है, भूलेगा, लेकिन बार बार देखने वाले को पकड़ लें। जैसे जैसे देखने वाला पकड़ में आने लगेगा, कभी कभी क्षण भर को ही आएगा, लेकिन क्षण भर को ही पाएंगे, एक अपूर्व शांति का उदय हुआ, एक आशीष बरसा, एक सौभाग्य की किरण उतरी। एक क्षण को भी अगर ऐसा होगा तो एक क्षण को भी मुक्ति का आनंद मिलेगा, और वो आनंद तुम्हारे जीवन के स्वाद को और जीवन की धारा को बदल देगा। शब्द नहीं बदलेंगे तुम्हारे जीवन की धारा को, शास्त्र नहीं बदलेंगे, अनुभव बदलेगा, स्वाद बदलेगा। यहां मुझे सुन रहे हैं, दो तरह से सुना जा सकता है। सुनते वक्त मैं जो बोल रहा हूं अगर उस पर ही ध्यान रहे और तुम अपने को भूल जाओ तो फिर तुम दृष्टा ना रहे, श्रोता ना रहे, श्रावक ना रहे, तुम्हारा ध्यान मुझ पे अटक गया तो तुम दर्शक हो गए। आंख से ही दर्शक नहीं हुआ जाता, कान से भी दर्शक हुआ जाता है।
1: आदरणीय श्रोता, आज

0: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।
1: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि आपके साथ और हिंदी सिनेमा के हिट गाने लेकर फिर से लौट आई हूं मैं। वैसे आज के मेरे शो में उस दोस्ती को हम सेलिब्रेट करेंगे जिस दोस्ती ने हमें ऑलमोस्ट 30 सालों तक अपने गानों से एंटरटेन किया। 1950 में उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे टैक्सी ड्राइवर, 9-2-11, काला पानी, मुनीम जी और पेइंग गेस्ट जैसी फिल्मों में साथ काम करके इन्होंने बॉलीवुड में कई म्यूजिकल हिट्स दिए हैं। मैं बात कर रही हूँ एसडी बर्मन साहब और देवानंद साहब की जोड़ी की। एसडी बर्मन जी ने कई हिट गाने कंपोज किए देवानंद साहब की प्रोडक्शन कंपनी नव केतन की फिल्मों के लिए। इनफैक्ट इन दोनों की दोस्ती इसलिए भी थी क्योंकि दोनों में काफी चीजें कॉमन थी। दोनों में वैरायटी, क्रिएटिविटी और नॉवेल्टी की भूख थी। ऑल्सो आई फील दैट देयर म्यूजिक हैड अ पॉप अपील। वैसे क्या आप जानते हैं कि गाइड फिल्म के दौरान दादा यानी कि एसडी बर्मन साहब की तबीयत अक्सर बिगड़ जाया करती थी और देवानंद साहब उनके इतने अच्छे दोस्त थे कि वो हर बार जानते थे कि आखिर बिना किसी इन्फेक्शन के, बिना किसी शारीरिक तकलीफ के क्यों बार बार उन्हें बुखार आ जाता है और वो काम से छुट्टी ले लेते हैं। वजह ये थी कि बर्मन साहब के पारिवारिक जीवन में काफ़ी परेशानियां थीं। उनकी और उनकी पत्नी की ज़्यादा जमती नहीं थी जिसके कारण वो काफ़ी टेंशन में रहते थे और साइकोलॉजिकली इतना अफेक्ट हो जाते थे कि उनकी तबीयत खराब हो जाती थी। कई बार बर्मन साहब को खुद देव साहब ने कहा है कि आप जरा छुट्टी लीजिए, घूम फिर करके आइए, काम तो होता रहेगा। वैसे गाइड फिल्म की बात कर रहे हैं तो चलिए इसी फिल्म के गाने से शो की शुरुआत करते हैं। सुनते हैं लता दीदी और किशोर दा की आवाज में अगला गाना।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: मलाई ट्रैक सूट चाहियो,
2: मलाई फ्रॉक,
3: मलाई पनि सूट,
4: अनि मलाई

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूँ रुचि आपके साथ और हिंदी फिल्म के सुपर हिट गाने सुना रही हूँ आज मैं आपको। सेलिब्रेट कर रहे हैं हम दादा और देव जी के रिश्ते को, यानी कि देव साहब और एसडी बर्मन जी की दोस्ती को। वैसे इनके हिट गानों के पीछे भी एक राज है और वो ये है कि देव साहब हमेशा समय निकाला करते थे कि वो जाएं एसडी बर्मन जी के साथ में बैठें, वो किस तरह से धुने बना रहे हैं वो ऑब्जर्व करें, और अगर कुछ भी उन्हें लगता है कि ऊंच नीच है, किसी चीज को बेहतर बनाया जा सकता है, तो बर्मन साहब की मदद करें। देव साहब वैसे मानते हैं कि एसडी बर्मन जी उनके म्यूजिकल सोलमेट थे। इतना ही नहीं, बर्मन साहब ये तो सभी लोग जानते हैं कि धुने पहले बनाया करते थे और उसके बाद में उस पर शब्द ऐड करते थे, तो लिरिसिस्ट भी यूं ही नहीं चुन लिया जाता था। दोनों देव साहब और बर्मन साहब साथ में बैठते थे और उसके बाद में डिसाइड करते थे कि आखिर इस धुन के ऊपर कौन है वो लिरिसिस्ट जो कि बखूबी शब्द ऐड कर सकता है और इस गाने को और बेहतरीन बना सकता है। वैसे आप मानेंगे नहीं, अपने जमाने में वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स रह चुके हैं हेमंत कुमार साहब, और उनके करियर का वो क्रेडिट देते हैं इन्हीं दोनों को, यानी कि बर्मन साहब और देव साहब को। जाल फिल्म का जो गाना था जो कि हेमंत कुमार जी ने गाया था, वो एक्चुअली हेमंत कुमार जी का होना ही नहीं था। उसके लिए कुछ और सिंगर्स को देखा जा रहा था, लेकिन बर्मन साहब ने कहा कि क्यों ना हेमंत कुमार जी के साथ में एक्सपेरिमेंट किया जाए और उन्हें ट्राई किया जाए। डायरेक्टर गुरुदत्त साहब इतने ज्यादा कन्विंस्ड नहीं थे कि वो इस गाने के साथ में पूरी तरह से जस्टिस कर पाएंगे या नहीं, लेकिन देव साहब बर्मन साहब में पूरी तरह से विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने भी एक्साइटमेंट दिखाया। एंड दैट इज हाउ हेमंत कुमार जी ने ये गाना गाया। गाना इतना हिट हुआ कि उसके बाद में हेमंत कुमार जी ने कई सारे गाने गाए थे देव साहब के लिए। वैसे क्या आप जानते हैं कि दादा यानी कि बर्मन साहब और देव साहब की मुलाकात आखिर हुई कैसे थी? बड़ा मस्त किस्सा है इसके पहले। दोस्ती अगर होनी हो तो जैसे तैसे हो ही जाती है। बताऊंगी आपको ये किस्सा, लेकिन उसके पहले सबसे चेयरफुल सॉन्ग जो रहा है इन दोनों का, बर्मन साहब और देव साहब का, जिसमें हारमोनियम खुद एसडी बर्मन जी ने ही प्ले किया था हेमंत कुमार जी की आवाज में, 16 साल से। सुनिए ये गाना मेरे यानी रुचि के साथ।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि आपके साथ और एसडी बर्मन और देव साहब की दोस्ती को आज के इस एपिसोड में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उन्हीं के कुछ बेहतरीन गानों के साथ। वैसे एसडी बर्मन साहब जिनके कई नाम हैं उन्हें देव साहब ने ही दादा बुलाना शुरू किया था और फिर सभी लोग उन्हें दादा बुलाने लगे थे। उनकी पहली मुलाकात लेकिन कैसे हुई थी ये मैं आपको अभी बताती हूँ। ये उन दिनों की बात है जब बर्मन साहब ने कुछ एकाध फिल्में कर ली थी और जब देव साहब ने उनके कुछ गाने सुने थे तो उन्हें बड़ा पसंद भी आया था। उन्हें काफ़ी फ्रेश और बाकी जो उस समय म्यूज़िक का ट्रेंड चल रहा था उसके कंपैरिजन में बर्मन साहब का म्यूज़िक काफ़ी अलग लगा था। लेकिन यूं ही जनरली देव साहब गए हुए थे गुरुदत्त जी के साथ में अपने एक कॉमन फ्रेंड से मिलने के लिए सायन की एक छोटी सी बिल्डिंग में, और वहां पर जाकर के अपने दोस्त को इन दोनों ने बताया कि वो अपनी आने वाली एक फिल्म के लिए एक म्यूजिक कंपोजर को तलाश रहे हैं। तभी उनके दोस्त ने बताया कि हमारी बिल्डिंग में एसडी बर्मन नाम के एक कंपोजर रहते हैं और लगता है कि वो काफी आगे जाने वाले हैं, तो क्यों ना तुम उनसे एक बार मिल लो। बस क्या था, उसी दिन उसी शाम देव साहब और गुरुदत्त साहब ने मुलाकात की एसडी बर्मन जी से और बस वहीं पर उन्होंने अफसर फिल्म के लिए एसडी बर्मन जी को फाइनल कर लिया। And the rest, as they say, is history. वैसे क्या आप जानते हैं कि एस डी बर्मन साहब बहुत ही कम गाने कंपोज किया करते थे क्योंकि वो काफी पैरानॉइड थे कि उनका कोई भी गाना उनके पिछले किसी भी गाने की तरह नहीं साउंड करना चाहिए और हर गाने को एक अलग पहचान मिलनी चाहिए। एक और चीज है, एक आदत बर्मन साहब की जिसके लिए वो काफी फेमस हुआ करते थे, और वो ये था कि क्योंकि उनकी फर्स्ट लैंग्वेज बंगाली थी तो जब वो अपने गाने कंपोज करते थे तो उसमें जो भी शब्द खुद से ऐड करते थे, यूजुअली म्यूजिक कंपोजर्स धुन बनाते हैं और उसके ऊपर अपनी मनमर्जी के शब्द ऐड कर देते हैं, बाद में लिरिसिस्ट अच्छे कुछ और बोल उसमें मिला करके पोएट्री डाल करके एक प्रॉपर गाना बनाते हैं, लेकिन जो शुरुआती शब्द ऐड किया करते थे बर्मन साहब वो बंगाली में किया करते थे। अपनी आवाज में गाने गाते थे, धुन रिकॉर्ड करते थे और शब्द सारे बंगाली में हुआ करते थे। उनकी इस आदत की शुरुआत हुई थी काला पानी फिल्म के साथ में, और इसी फिल्म का एक गाना आपको सुना रही हूँ आशा जी और रफी साहब की आवाज में। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो, मैं रुचि आपके साथ।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ लेले,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।

0: मन शांति आराधना र उपहारका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती नेपालको पहिलो ISO सर्टिफाइड अगरबत्ती कम्पनी
1: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती पवित्र सुवास
2: You are listening to Weekend Classic Radio Show.
3: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप. मैं हूं रुचि आपके साथ. और आज जितने भी गाने आप सुन रहे हैं जिनके जरिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं देव साहब और बर्मन साहब, एसडी बर्मन साहब की दोस्ती को. बर्मन साहब और देव साहब के कई पॉपुलर गाने किशोर दा ने गाए हैं. वैसे वो बर्मन साहब ही थे जिन्होंने किशोर कुमार जी की आवाज को हिंदी फिल्मों में फेमस किया. अगर दादा यानी कि बर्मन साहब किशोर दा की आवाज को देव साहब की आवाज बना करके यूज नहीं करते या उनके हिसाब से किशोर जी की आवाज को मोल्ड नहीं करते तो किशोर दा का ये टैलेंट कभी भी लोगों के सामने शायद नहीं आ पाता. वैसे कि आप ये जानते हैं कि देव साहब ने गाइड फिल्म और तीन देवियां फिल्म का इंग्लिश वर्जन भी बनाया था जिसके लिए बर्मन दा ने दो इंग्लिश गानों को रिकॉर्ड भी किया था जिसे हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था. हालांकि उसका म्यूजिक कभी लोगों के सामने आया ही नहीं इसलिए ये गाने सुन पाना काफी मुश्किल है. मेरे और आपके बस की शायद बात नहीं है. वो ना सही लेकिन हिंदी फिल्म तीन देवियां का गाना तो हम सुन ही सकते हैं. तो चलिए सुनाते हैं आपको ये गाना किशोर दा की आवाज में. सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो. मैं रुचि आपके साथ.

सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं।
1: One oh four eight.

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि आपके साथ। देव साहब और एसडी बर्मन जी की दोस्ती को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनकी दोस्ती के कुछ किस्से कहानियां मैं आपको सुना रही हूं। देव साहब की प्रोडक्शन कंपनी ने बर्मन साहब को अपने म्यूजिक के लिए एक खाली कैनवस देके रखा था। जिस तरह का म्यूजिक आपको बनाना है आप बनाइए, हम पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे और आपको ट्रस्ट करेंगे। जूल थीफ के बाद देव साहब को ऐसा लगने लगा था कि उन्हें अपनी फिल्में खुद लिखनी और डायरेक्ट करनी चाहिए। उन्होंने इसीलिए एक सीरियस टॉपिक लिया और प्रेम पुजारी बनाया, जो कि बिल्कुल भी नहीं चली थी वैसे बॉक्स ऑफिस पर। दादा और देव साहब की दोस्ती इतनी गहरी थी कि वो कह देते थे अगर उन्हें एक दूसरे का काम पसंद नहीं आता था तो। देव साहब के लिए इतना प्यार होने के बावजूद भी बर्मन साहब ने, एसडी बर्मन जी ने ऑन रिकॉर्ड जाकर के एक बार कहा था कि देव साहब ने उनकी बनाई हुई एक धुन को पूरी तरह से बिगाड़ दिया, गलत इस्तेमाल किया, जो कि उन्हें पसंद नहीं आया था। क्या आप जानते हैं गाना कौन सा था? ये गाना था हरे रामा हरे कृष्णा का टाइटल ट्रैक, जो कि बर्मन साहब को इसलिए पसंद नहीं आया था क्योंकि इस फिल्म का जो टॉपिक था, जो ड्रग्स के आसपास थोड़ा बहुत दिखाई दिया था, वो उन्हें पसंद नहीं था। खैर, ये दोनों ही एसडी बर्मन जी और हमारे देव साहब, बोथ ऑफ देम वर ओपन टू आइडियाज चेंज एंड क्रिटिसिज्म, जिसके कारण इन दोनों का एसोसिएशन काफी लंबा चला। आइए सुनाते हैं आपको अगला गाना प्रेम पुजारी फिल्म से किशोरदा की आवाज में। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो। मैं रुचि आपके साथ।

0: कैसा लगा आपको ये शो? हर हफ्ते हम क्लासिक रेडियो शो का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं, सो डू ट्यून इन एवरी वीक। चलिए तो मैं रुचि यहाँ से विदा लेती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते।
1: निगाहें मस्ताना देख समा है सो

0: आहा, आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की
1: बहनों और भाइयों, संगीत सेवक अमीन सायानी के दोस्तों, गीतमाला की छाओं में बहुत कुछ सुनना और कहना है। छाओं के गीत भी पुरसर हैं और 1961 के गीतमाला हिट गीतों के दूसरे हिस्से की झलकें भी हैं। तो चलिए भाई फटाफट शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम उस साल की सालाना संगीत सीढ़ी की पायदान नंबर 16 से, जिस पर था फिल्म जिस देश में गंगा बहती है का गाना।
2: बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे मनमौजी को मुश्किल है समझाना।
1: हाँ, मगर अब्दुल्ला साहब को भी तो कुछ बोलने दीजिए।

0: बातों को मुश्किल है समझाना बेगानी शादी में।
1: और उस साल की पायदान नंबर 15 पर एक श्रद्धालु हसीना क्या नाची थी, और अदाकारी के कोहिनूर दिलीप कुमार ने क्या गाया था, मतलब ये कि मोहम्मद रफी की आवाज में गाया था, और उसके बाद उन्होंने सितार भी किस परफेक्शन से बजाया था। बताइए कौन सा था वो गीत।

0: को घुंघरू खनकाकर नाची थी कुमकुम, और उन्हीं से मैंने एक बार पूछा था कि कुमकुम जी कोहिनूर के गीतों में सितार के तारों पर किस खूबी से चली थी दिलीप कुमार की उंगलियां, क्या वो बरसों से सितार बजाने में माहिर थे?
1: अरे अमीन साहब, कोहिनूर के जमाने में उन्होंने बाकायदा उस्ताद बुलाया और सितार सीखा उन्होंने, और जब तक कि वो बहुत तैयार नहीं हो गए कि हाँ इस काबिल हो जाएं कि उसी लेवल पे बजा सकें और उतनी ही तैयारी पे बजा सकें, जब तक उन्होंने शॉट नहीं दिया।
0: हाँ, तो देखा आपने बहनों और भाइयों, कितनी मेहनत किया करते थे दिलीप साहब अपने हर रोल पर। बहरहाल अब आगे बढ़िए और पायदान नंबर 14 के गीत की

ये फिल्म टावर हाउस मैंने देखी नहीं थी मानो भाइयों, इसलिए इस गीत को स्क्रीन पर अदा करने वालों के नाम मैं नहीं लूंगा। ये गलती तो मैं भाई कर ही चुका हूँ वॉल्यूम नंबर 15 में कि धूल का फूल के एक गीत पर मैंने माला सिन्हा की जगह नंदा का नाम चिपका दिया था, मगर गीतमाले की छाओ में के करीब 15 सुनने वालों ने फौरन मेरी गलती पकड़ी और मुझे ईमेल करके टोका, तो थैंक यू वेरी मच एंड सॉरी वेरी मच। अच्छा वैसे सालाना पायदान नंबर 13 का गीत तो शायद मेरे प्यारे दोस्त और उनके रेडियो के जमाने से मेरे साथी सुनील दत्त साहब ने ही गाया था ना, फिल्म

0: भाई, असल में रोने की बात तो ये थी कि हालांकि इस फिल्म हम दोनों का संगीत एक तरह से 1961 का सबसे खूबसूरत सुपरहिट संगीत था, मगर उसके बाद जयदेव को नवकेतन में म्यूजिक डायरेक्शन फिर कभी नहीं मिली। क्यों? इसका कारण जयदेव ने देवानंद और विजयानंद से पूछा, मैंने जयदेव जी से पूछा, मगर सभी ने शायद किसी न किसी का लिहाज करते हुए गोल गोल सा जवाब दिया और सच्चाई जो थी वो दब के रह गई। मगर गीतवाला की छाओं के किसी जल्द आने वाले अगले वॉल्यूम में आप जयदेव से एक और झगड़े की सच्ची बात सुनेंगे, क्योंकि भाई आखिर जैसा कि 1961 की पायदान नंबर 11 के गीत ने बताया था ना कि अच्छे लोग जहां तक हो सके सच ही तो बोलते हैं ना।
1: होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस दे

0: हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा
1: बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत वाला की छाव में

तो अब चार ऐसे गीत आएंगे जो पॉपुलैरिटी की धूप में नहीं तपे, गीतमाला की सालाना संगीत श्रेणियों तक नहीं पहुंचे, मगर हमारी यादों की ठंडी मीठी हवाओं में हमेशा लहराते रहे।

बहनों और भाइयों, ऐसे मधुर सुवर सुहाने गीत सुनना बहुत ही जरूरी है आजकल के तेज रफ्तार और मार धाड़ के जमाने में। और भाई, मेरे लिए तो ऐसे धीमे सॉफ्ट गीत अमृत का काम करते हैं। जब मैं 1961 का वो जमाना याद करता हूँ कि मैं उस साल एक साथ दो दो नौकरियां करने लगा था, एक रेडियो में गीतमाला और फिल्म पब्लिसिटी के प्रोग्राम, और दूसरे एक साबुन और तेल बनाने वाली कंपनी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम। यानी सुबह से लेकर आधी रात तक हर रोज सारे महीने काम ही काम, नो आराम। मगर हाँ, उस कंपनी की मार्केटिंग में मुझे ये बात जरूर समझ में आई कि साबुन हो या तेल हो, चाहे कोई गीत, वो चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मगर लोकप्रिय मकबूल पॉपुलर हिट तभी होता है अगर वो हर जगह सही समय पर मिले, उसकी पैकिंग भी अच्छी हो, जैसे गीत की फिल्म भी अच्छी हो और कामयाब हो, और गीत का सीन भी मजेदार और यादगार हो, और उसकी पब्लिसिटी भी ठीक तरह से की गई हो, वगैरह वगैरह वगैरह वगैरह। वरना आप ही बताइए बहनों भाइयों, उस साल के एक नए म्यूजिक डायरेक्टर सुहृत कार के संगीत में ढला हुआ ये गीत क्या सालाना संगीत सीढ़ी तक पहुंचने के काबिल नहीं था।

0: भाई इस फिल्म का नाम तो मुझे लेना ही पड़ेगा, कांच की गुड़िया, क्योंकि इसी से शुरू हुआ एक ऐसे होनहार नौजवान का करियर जो आगे चलकर न सिर्फ हिट हीरो बने बल्कि शानदार प्रोड्यूसर, राइटर और डायरेक्टर भी बने। लीजिए ये कहानी उन्हीं से सुनिए।
1: अमीन साहब, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर लेखराज भाकड़ी रिश्ते में मेरे भाई हैं। वो अक्सर हमारे घर आया जाया करते थे।
2: अच्छा।
1: जब उनकी और कुलदीप सहगल जी की फिल्म टांगे वाली रिलीज हुई तो प्रीमियर पर उन्होंने हमारे सारे परिवार को बुलाया। उन दिनों मेरी उम्र 19 साल की थी और कद 6 फुट।
2: अच्छा।
1: मैं प्रीमियर पे पहुंचा तो मुझे देखकर लेखराज जी बोले, अरे अपना गुल्लू तो बिल्कुल हीरो लगता है।
0: गुल्लू यानी आप?
1: जी हाँ, घर वाले मुझे प्यार से गुल्लू कहते हैं। वैसे मेरा नाम हरी कृष्ण है।
0: अच्छा, तो अब ये बताइए कि हरी कृष्ण से आप मनोज कुमार कैसे बने?
1: बात ये हुई कि जिन दिनों मैं बंबई की फिल्मी दुनिया में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था उन दिनों इत्तेफाक से मेरी मुलाकात HS रवेल साहब से हो गई। उन्होंने अपनी फिल्म कांच की गुड़िया में मुझे मेरा सबसे पहला हीरो का रोल दिया और मुझे अपने बचपन का वो वाकया याद आ गया जब मैंने फिल्म शबनम देखी थी और जिसमें दिलीप कुमार साहब का नाम मनोज था। उसी दिन ये तय कर लिया था कि अगर जिंदगी में हीरो बनने का मौका मिला तो अपना फिल्मी नाम मनोज रख लूंगा।
0: बहनों भाइयों, मनोज कुमार की फिल्मों के शानदार गीत तो बहुत सारे आने वाले हैं गीत वाला की छाव में, मगर अभी ये देखिए ये कौन आई है उदास उदास और क्या क्या लाई है आपके लिए।

0: शांति आराधना र उपहारका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती नेपालको पहिलो ISO सर्टिफाइड अगरबत्ती कम्पनी
1: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती पवित्र सुवास
2: बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत वाला की छाव में हो बाप रे 1961 की छाओ के मध्यम सुरूर में हल्के हल्के झूमते हुए मैं एक खास बात तो भाई भूल ही गया और वो ये कि अभी तो फिर चलिए मद्रास यानी चेन्नई मेरे साथ जहां मुझे पहली बार शकील बदायूनी ले गए थे जेमिनी की फिल्म घूंघट की पब्लिसिटी के लिए और उसके

0: भाई जेमिनी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर एस वासन साहब की अजमत यानी ग्रेटनेस के बारे में मैं क्या बताऊं। लीजिए खुद म्यूजिक डायरेक्टर रवि से सुनिए।
1: वासन साहब रियली वो बहुत ग्रेट थे। मैं तो उनको कहा करता था कि आप रियली यू आर द हेडमास्टर ऑफ द होल फिल्म इंडस्ट्री, मतलब बहुत ही बहुत काबिल थे। हर चीज़ को इतना डिटेल में सोचते थे। यहाँ हम लोग म्यूजिक रिकॉर्ड करके, गाने रिकॉर्ड करके भेज देते थे। एक गाना हमने रिकॉर्ड किया, मेरे बने की बात ना पूछो, मेरा बना हरियाला है।

0: वहां से उनका मैसेज आया कि आपको बुलाया है।
1: अच्छा,
0: तो मैं चला गया। मैंने जाकर कहा वासु साहब किस लिए बुलाया? बोले मैंने ये इसलिए बुलाया कि ये गाना जो तुमने बनाया है, क्या क्या सोच कर ये म्यूजिक बनाया है तुमने? तो म्यूजिक के लिए मैं पिक्चराइजेशन के लिए जरा मैं समझना चाहता था, तुमने क्या कंसेप्ट, क्या कंसेप्शन था तुम्हारा, क्या सोचा था? मैंने बताया तो उन्होंने डांस कर करके मुझे वो मतलब उस गाने के लिए इम्प्रेस किया कि मैं ऐसा पिक्चराइजेशन इसको करूंगा।
1: अरे
0: मुझे बहुत मजा आया कि इतना बड़ा डायरेक्टर प्रोड्यूसर और इस तरह इतना इन्वॉल्व अपने आप को गहराई में घुसे हुए, बहुत ही अच्छे आदमी थे।
2: और बहनों और भाइयों, 1961 के एनुअल हिट गीत नंबर 9 को याद करते हुए मैं अब आपको देने वाला हूं एक झटका, एक

0: दिन कटते नहीं रहे।
1: अब आप कहेंगे कि ये क्या हुआ भाई, फिल्म सारंगा के सुपरहिट गीत को तो मुकेश ने गाया था, मगर ये तो मोहम्मद रफी की आवाज थी, ये कैसे हुआ? अरे साहब, इसी तरह मैं भी चौंका था जब गीतमाला के दोस्त मोहन भंबानी साहब ने मुझे रफी का गाया हुआ ये बहुत ही रेयर, बहुत ही नायाब मुखड़ा भेजा। तो मैंने फौरन सारंगा के संगीतकार मरहूम सरदार मलिक के होनहार बेटे अन्नू मलिक को फोन किया, तो उन्होंने बताया कि जब ये गीत रिकॉर्ड होने को था तो सरदार मलिक ने इसके लिए मुकेश ही की आवाज चुनी थी, मगर डायरेक्टर धीरूभाई देसाई अड़ गए कि नहीं, मुकेश इतना सुर में नहीं गा पाएंगे जितना रफी गा पाएंगे, और किसी न किसी तरह रफी साहब से मुखड़ा गवाया भी गया। मगर अब सरदार मलिक अड़े कि अरे धीरू भाई, गवाइए इस गीत को मुकेश भाई से और देखिए कैसा सुरीला यादगार तूफान बर्पा करेगा ये गीत। और साहब यही तो हुआ।

और वाह वाह बहनों और भाइयों, उस साल का हिट गीत नंबर 8 भी तो कैसा क्लासिक, कैसा अमर गीत था। किशोर कुमार के ऑल टाइम बेहतरीन गीतों में से एक, उन्हीं के संगीत में ढला हुआ।

0: इस फिल्म ससुराल के आते आते तो इसके हीरो राजेंद्र कुमार का नाम ही पड़ गया था, जुबली कुमार। जी हाँ, क्योंकि जिस फिल्म में ये काम करते वो फिल्म सिल्वर जुबली बना लेती। मगर इस नाम और इस कामयाबी को राजेंद्र कुमार ने कैसे पाया और कैसे बनाए रखा, ये खुद उसी गजब के जुबली स्टार की आवाज में सुनिए।
1: अमीन साहब, कामयाबी को बरकरार रखना कामयाबी हासिल करने से ज्यादा मुश्किल होता है।
2: दुरुस्त है।
1: मेरे ख्याल में एक कामयाब अदाकार को बयक वक्त बहुत सी तस्वीरों में काम नहीं करना चाहिए। अपने लिए सोच समझ कर अच्छी अच्छी कहानियों का चुनाव करना चाहिए, अच्छे अच्छे फिल्म बनाने वालों के साथ काम करना चाहिए, और फिर अपने काम को ईमान समझकर नहायत मेहनत और नेक दिली से काम करना चाहिए। तो मेरा यकीन है कि कोई भी अदाकार अपनी कामयाबी को बरकरार रख सकता है।
0: यही जुबली स्टार उस साल के हिट गीत नंबर 6 में भी नजर आए थे, मगर आवाज एक नए सिंगर की थी। बताइए कौन?

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत वाला की छाव में

और अब भाई आप अपने दिल पर हाथ रखकर बैठ जाइए, क्योंकि अब एक के बाद एक आने वाले हैं तीन बड़े ही प्यारे दिल को छू लेने वाले गीत जो रह गए थे 1961 की छाओं में। बस तो अब अमीन सायानी चुप, आगे बढ़ने दो गीतों को और मैं जाता हूँ।

0: 1961 के यादगार छांव वाले गीतों में कई ऐसे संगीत सितारों के नाम मिलेंगे जो कुछ कुछ नए थे अपनी अपनी लाइन में, जैसे इस खूबसूरत गीत के संगीतकार सी अर्जुन भी तो नए नए से थे। सी अर्जुन बड़े हंसमुख, बड़े मसखरे सिंधी नौजवान थे और उन्होंने मुझे बड़े मजेदार अंदाज में बताया था कि शुरू में उनके इस नए नाम से कैसी गड़बड़ होने लगी थी।
1: अमीन भाई, जब ये मेरी पहली फिल्म अनाउंस हुई
2: जी,
1: तो कितने डिस्ट्रीब्यूटर थे उनको मेरे नाम पे बहुत एतराज था।
2: अच्छा अच्छा।
1: क्योंकि मैं नया नया आया।
2: हाँ।
1: तो वो कहने लगी ये भाई महमूद इस पिक्चर में है हीरो, फिर शोभा कोटे भी है।
2: हाँ।
1: मगर ये म्यूजिक डायरेक्टर सी अर्जुन कौन है?
2: अच्छा अच्छा।
1: तो उन्हें मेरे नाम पे बहुत एतराज, बेचारा मेरा प्रोड्यूसर, उसकी भी पहली पहली फिल्म।
2: हाँ।
1: वो भी घबरा गया।
2: अच्छा।
1: कि ये अभी पिक्चर शुरू ही नहीं हुई, इतने में मालूम नहीं ये डिस्ट्रीब्यूटर्स मेरे को क्या बोल रहे हैं। तो वो कहने लगे कि भाई ये म्यूजिक डायरेक्टर कोई बड़ा लियो, ये सी अर्जुन नहीं चलेगा।
2: अरे।
1: तो मेरा प्रोड्यूसर वो भी बहुत होशियार था, उसने कहा देखो भाई ये जो सी अर्जुन है वो सी रामचंद्र का छोटा भाई।
2: सी रामचंद्र का छोटा भाई?
1: जी हाँ। अच्छा। तभी जाके उनको कुछ तसल्ली हुई कि ये म्यूजिक अच्छा दे सकेगा।
2: अच्छा अच्छा।
0: और भाई उस साल छोटे नवाब पंचम भी तो नए थे, जो आते ही पहुंच गए 1961 की पायदान नंबर 5

और अब दो और शानदार पायदाने आपके सामने अपने हिट गीतों की झलके लिए। दोनों पायदानों पर जमी थी फिल्म जिस देश में गंगा बहती है। पायदान नंबर 4 पर था राज कपूर का सेल्फ इंट्रोडक्शन।

0: नाम राजू।
1: और नंबर 3 पर था झरने तले नहाती हुई पद्मिनी का ऐलान।
2: मैंने प्यार किया, ओए होए क्या जुर्म किया। मैंने प्यार किया, ओए होए क्या जुर्म किया। इन आँखों का रंग हो गया गुलाबी गुलाबी।

और इसके बाद सिर्फ दो चोटी के गीतों की झलकें बाकी, मगर उनसे भी पहले दो लाजवाब गीत उस साल की छांव के। एक तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका वगैरह ही नहीं बल्कि सारे एशिया और शायद सारी दुनिया की टूटती हुई इंसानियत और एकता को फिर से जोड़ने की उम्मीद दिलाने वाला गीत। आहा, क्या बोल थे, क्या धुन, क्या आवाजें और कैसा

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ FM अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: गोल्ड पैलेस सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: अनि मलाई

0: சாவேல் சுச்சேபாக்கி
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

क्रिकेट मस्ती एंड डांस बेस्ट ऑफ नॉन स्टॉप हिंदी रिमिक्स ओनली ऑन FM AJ 104.8 मेगाहर्ट्ज़।

0: गोल्ड पैलेस सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूँ।

0: गोल्ड पैलेस सुप्रपत न्यू रोड काठमांडू। फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820, मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई सदैव।
1: FM AJ 104.8 MHz।

0: आहा, आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा। और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें। बहनों और भाइयों, संगीत सेवक अमीन सायानी के दोस्तों, गीतमाला की छाओ में बहुत कुछ सुनना और कहना है। छाओ के गीत भी पुरसर हैं और 1961 के गीतमाला हिट गीतों के दूसरे हिस्से की झलकें भी हैं। तो चलिए भाई फटाफट शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम उस साल की सालाना संगीत सीढ़ी की पायदान नंबर 16 से, जिस पर था फिल्म जिस देश में गंगा बहती है का गाना।
1: बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे मनमौजी को मुश्किल है समझाना।
0: हाँ, मगर अब्दुल्ला साहब को भी तो कुछ बोलने दीजिए।

0: बातों को मुश्किल है समझाना बेगानी शादी में।
1: और उस साल की पायदान नंबर 15 पर एक श्रद्धालु हसीना क्या नाची थी, और अदाकारी के कोहिनूर दिलीप कुमार ने क्या गाया था, मतलब ये कि मोहम्मद रफी की आवाज में गाया था, और उसके बाद उन्होंने सितार भी किस परफेक्शन से बजाया था। बताइए कौन सा था वो गीत।

0: घुंघरू खनकाकर नाची थी कुमकुम, और उन्हीं से मैंने एक बार पूछा था कि कुमकुम जी, कोहिनूर के गीतों में सितार के तारों पर किस खूबी से चली थी दिलीप कुमार की उंगलियां? क्या वो बरसों से सितार बजाने में माहिर थे?
1: अरे अमीन साहब, कोहिनूर के जमाने में उन्होंने बाकायदा उस्ताद बुलाया और सितार सीखा उन्होंने, और जब तक कि वो बहुत तैयार नहीं हो गए कि हाँ इस काबिल हो जाएं कि उसी लेवल पे बजा सकें और उतनी ही तैयारी पे बजा सकें, जब तक उन्होंने शॉट नहीं दिया।
0: हाँ, तो देखा आपने बहनों और भाइयों, कितनी मेहनत किया करते थे दिलीप साहब अपने हर रोल पर। बहरहाल अब आगे बढ़िए और पायदान नंबर 14 के गीत की झलक सुनिए जरा।

ये फिल्म टावर हाउस मैंने देखी नहीं थी मैनो भाइयों, इसलिए इस गीत को स्क्रीन पर अदा करने वालों के नाम मैं नहीं लूंगा। ये गलती तो मैं भाई कर ही चुका हूँ वॉल्यूम नंबर 15 में कि धूल का फूल के एक गीत पर मैंने माला सिन्हा की जगह नंदा का नाम चिपका दिया था, मगर गीतमाला की छाओ में के करीब 15 सुनने वालों ने फौरन मेरी गलती पकड़ी और मुझे ईमेल करके टोका, तो थैंक यू वेरी मच एंड सॉरी वेरी मच। अच्छा वैसे सालाना पायदान नंबर 13 का गीत तो शायद मेरे प्यारे दोस्त और उनके रेडियो के जमाने से मेरे साथी सुनील दत्त साहब ने ही गाया था ना, फिल्म

0: भाई असल में रोने की बात तो ये थी कि हालांकि इस फिल्म हम दोनों का संगीत एक तरह से 1961 का सबसे खूबसूरत सुपरहिट संगीत था, मगर उसके बाद जयदेव को नवकेतन में म्यूजिक डायरेक्शन फिर कभी नहीं मिली। क्यों? इसका कारण जयदेव ने देवानंद और विजयानंद से पूछा, मैंने जयदेव जी से पूछा, मगर सभी ने शायद किसी न किसी का लिहाज करते हुए गोल गोल सा जवाब दिया और सच्चाई जो थी वो दब के रह गई। मगर गीतवाला की छाओं के किसी जल्द आने वाले अगले वॉल्यूम में आप जयदेव से एक और झगड़े की सच्ची बात सुनेंगे, क्योंकि भाई आखिर जैसा कि 1961 की पायदान नंबर 11 के गीत ने बताया था ना कि अच्छे लोग जहां तक हो सके सच ही तो बोलते हैं ना।
1: होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस दे

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभाव हरुले मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 मा संपर्क करना सक्नु हुने छ।
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो,
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं। जेजे ज्वेलर्स प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्समा छ सुन चाँदी तथा हीरा का आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्शन। सुन चाँदी तथा हीरा जे किन्नुस जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुस।
4: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक मुनि।
5: सम्पर्क नम्बर 5320411 9820076888।
2: जे जे ज्वेलर्स शुद्धता को पहचान।

बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत माला की छाव में तो अब चार ऐसे गीत आएंगे जो पॉपुलैरिटी की धूप में नहीं तपे, गीतमाला की सालाना संगीत श्रेणियों तक नहीं पहुंचे, मगर हमारी यादों की ठंडी मीठी हवाओं में हमेशा लहराते रहेंगे।

इस हसीन गीत के गीतकार और खासकर संगीतकार का नाम जरूर देख लीजिएगा कवर पर। लेकिन 1961 के अगले छाव के गीत के संगीतकार का नाम तो मैं इसलिए लूंगा ही लूंगा क्योंकि ये नाम मैं करीब करीब भूल ही चुका था। लच्छी राम, आपको भी शायद याद नहीं होगा, मगर जब हमारे साथी और बड़े गजब के मददगार अनूप गाड़ोड़िया और कमल बेरीवाला ने कोलकाता से मुझे ये 1961 का अनोखा गीत भेजा तो मैं चौंक गया कि अरे ये गीत तो मैंने करीब 45 साल से नहीं सुना, इसे तो गीतमाला की छांव में बजाना ही चाहिए।

बहनों और भाइयों, ऐसे मधुर सुबर सुहाने गीत सुनना बहुत ही जरूरी है आजकल के तेज रफ्तार और मार धाड़ के जमाने में। और भाई, मेरे लिए तो ऐसे धीमे सॉफ्ट गीत अमृत का काम करते हैं। जब मैं 1961 का वो जमाना याद करता हूँ कि मैं उस साल एक साथ दो दो नौकरियां करने लगा था, एक रेडियो में गीतमाला और फिल्म पब्लिसिटी के प्रोग्राम, और दूसरे एक साबुन और तेल बनाने वाली कंपनी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम। यानी सुबह से लेकर आधी रात तक हर रोज सारे महीने काम ही काम, नो आराम। मगर हाँ, उस कंपनी की मार्केटिंग में मुझे ये बात जरूर समझ में आई कि साबुन हो या तेल हो, चाहे कोई गीत, वो चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मगर लोकप्रिय, मकबूल, पॉपुलर हिट तभी होता है अगर वो हर जगह सही समय पर मिले, उसकी पैकिंग भी अच्छी हो, जैसे गीत की फिल्म भी अच्छी हो और कामयाब हो, और गीत का सीन भी मजेदार और यादगार हो, और उसकी पब्लिसिटी भी ठीक तरह से की गई हो, वगैरह वगैरह वगैरह वगैरह। वरना आप ही बताइए बहनों भाइयों, उस साल के एक नए म्यूजिक डायरेक्टर सुहृत कार के संगीत में ढला हुआ ये गीत क्या सालाना संगीत सीढ़ी तक पहुंचने के काबिल नहीं था।

0: इस फिल्म का नाम तो मुझे लेना ही पड़ेगा, कांच की गुड़िया, क्योंकि इसी से शुरू हुआ एक ऐसे होनहार नौजवान का करियर जो आगे चलकर न सिर्फ हिट हीरो बने बल्कि शानदार प्रोड्यूसर, राइटर और डायरेक्टर भी बने। लीजिए ये कहानी उन्हीं से सुनिए।
1: अमीन साहब, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर लेखराज भाकड़ी रिश्ते में मेरे भाई हैं। वो अक्सर हमारे घर आया जाया करते थे।
2: अच्छा।
1: जब उनकी और कुलदीप सहगल जी की फिल्म टांगे वाली रिलीज हुई तो प्रीमियर पर उन्होंने हमारे सारे परिवार को बुलाया। उन दिनों मेरी उम्र 19 साल की थी और कद 6 फुट।
2: अच्छा।
1: मैं प्रीमियर पे पहुंचा तो मुझे देखकर लेखराज जी बोले, अरे अपना गुल्लू तो बिल्कुल हीरो लगता है।
0: गुल्लू यानी आप?
1: जी हाँ, घर वाले मुझे प्यार से गुल्लू कहते हैं। वैसे मेरा नाम हरी कृष्ण है।
0: अच्छा, तो अब ये बताइए कि हरी कृष्ण से आप मनोज कुमार

मनोज कुमार की फिल्मों के शानदार गीत तो बहुत सारे आने वाले हैं गीतवाला की छाव में, मगर अभी ये देखिए ये कौन आई है उदास उदास और क्या क्या लाई है आपके लिए।

0: ओल्ड पैलेस सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

0: आइए फिर एक बार गीतवाला की छाव में।
1: ओ हो बाप रे, 1961 की छाव के मध्यम सुरूर में हल्के हल्के झूमते हुए मैं एक खास बात तो भाई भूल ही गया, और वो ये कि अभी तो फिर चलिए मद्रास यानी चेन्नई मेरे साथ, जहाँ मुझे पहली बार शकील बदायूनी ले गए थे जेमिनी की फिल्म घूंघट की पब्लिसिटी के लिए, और उसके फौरन बाद फिर एक बार फिल्म घराना के लिए। घूंघट के डायरेक्टर थे रामानंद सागर साहब, जिनसे आगे चलकर मेरा भाई जैसा नाता जुड़ गया, और घराना को खुद जेमिनी के महान प्रोड्यूसर SS वासन ने डायरेक्ट भी किया था। और

0: भाई जेमिनी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर एस वासन साहब की अजमत यानी ग्रेटनेस के बारे में मैं क्या बताऊं। लीजिए खुद म्यूजिक डायरेक्टर रवि से सुनिए।
1: वासन साहब रियली वो बहुत ग्रेट थे। मैं तो उनको कहा करता था कि आप रियली यू आर द हेडमास्टर ऑफ द होल फिल्म इंडस्ट्री, मतलब बहुत ही बहुत काबिल थे। हर चीज़ को इतना डिटेल में सोचते थे। यहाँ हम लोग म्यूजिक रिकॉर्ड करके गाने रिकॉर्ड करके भेज देते थे। एक गाना हमने रिकॉर्ड किया, मेरे बने की बात ना पूछो, मेरा बना हरियाला है।

0: वहां से उनका मैसेज आया कि आपको बुलाया है।
1: अच्छा,
0: तो मैं चला गया। मैंने जाकर कहा वासु साहब किस लिए बुलाया? बोले मैंने ये इसलिए बुलाया कि ये गाना जो तुमने बनाया है, क्या क्या सोचकर ये म्यूजिक बनाया है तुमने? तो म्यूजिक के लिए मैं पिक्चराइजेशन के लिए जरा मैं समझना चाहता था, तुमने क्या कंसेप्ट, क्या कंसेप्शन था तुम्हारा, क्या सोचा था? मैंने बताया तो उन्होंने डांस कर करके मुझे वो मतलब उस गाने के लिए इंप्रेस किया कि मैं ऐसा पिक्चराइजेशन इसको करूंगा।
1: अरे
0: मुझे बहुत मजा आया कि इतना बड़ा डायरेक्टर प्रोड्यूसर और इस तरह इतना इन्वॉल्व अपने आप को गहराई में घुसे हुए, बहुत ही अच्छे आदमी थे।
2: और बहनों और भाइयों, 1961 के एनुअल हिट गीत नंबर 9 को याद करते हुए मैं अब आपको देने वाला हूं एक झटका, एक इले

अब आप कहेंगे कि ये क्या हुआ भाई, फिल्म सारंगा के सुपरहिट गीत को तो मुकेश ने गाया था, मगर ये तो मोहम्मद रफी की आवाज थी, ये कैसे हुआ? अरे साहब, इसी तरह मैं भी चौंका था जब गीतमाला के दोस्त मोहन भंबानी साहब ने मुझे रफी का गाया हुआ ये बहुत ही रेयर, बहुत ही नायाब मुखड़ा भेजा। तो मैंने फौरन सारंगा के संगीतकार मरहूम सरदार मलिक के होनहार बेटे अन्नू मलिक को फोन किया, तो उन्होंने बताया कि जब ये गीत रिकॉर्ड होने को था तो सरदार मलिक ने इसके लिए मुकेश ही की आवाज चुनी थी, मगर डायरेक्टर धीरूभाई देसाई अड़ गए कि नहीं, मुकेश इतना सुर में नहीं गा पाएंगे जितना रफी गा पाएंगे, और किसी न किसी तरह रफी साहब से मुखड़ा गवाया भी गया। मगर अब सरदार मलिक अड़े कि अरे धीरू भाई, गवाइए इस गीत को मुकेश भाई से और देखिए कैसा सुरीला यादगार तूफान बरपा करेगा ये गीत। और साहब यही तो हुआ।

0: इस फिल्म ससुराल के आते आते तो इसके हीरो राजेंद्र कुमार का नाम ही पड़ गया था, जुबली कुमार। जी हाँ, क्योंकि जिस फिल्म में ये काम करते वो फिल्म सिल्वर जुबली बना लेती। मगर इस नाम और इस कामयाबी को राजेंद्र कुमार ने कैसे पाया और कैसे बनाए रखा, ये खुद उसी गजब के जुबली स्टार की आवाज में सुनिए।
1: अमीन साहब, कामयाबी को बरकरार रखना कामयाबी हासिल करने से ज्यादा मुश्किल होता है।
2: दुरुस्त है।
1: मेरे ख्याल में एक कामयाब अदाकार को बयक वक्त बहुत सी तस्वीरों में काम नहीं करना चाहिए। अपने लिए सोच समझ कर अच्छी अच्छी कहानियों का चुनाव करना चाहिए, अच्छे अच्छे फिल्म बनाने वालों के साथ काम करना चाहिए, और फिर अपने काम को ईमान समझ कर नहायत मेहनत और नेक दिली से काम करना चाहिए। तो मेरा यकीन है कि कोई भी अदाकार अपनी कामयाबी को बरकरार रख सकता है।
0: यही जुबली स्टार उस साल के हिट गीत नंबर 6 में भी नजर आए थे, मगर आवाज एक नए सिंगर की थी।

और अब भाई आप अपने दिल पर हाथ रखकर बैठ जाइए, क्योंकि अब एक के बाद एक आने वाले हैं तीन बड़े ही प्यारे दिल को छू लेने वाले गीत जो रह गए थे 1961 की छाओं में। बस तो अब अमीन सायानी चुप, आगे बढ़ने दो गीतों को और

0: 1961 के यादगार छांव वाले गीतों में कई ऐसे संगीत सितारों के नाम मिलेंगे जो कुछ कुछ नए थे अपनी अपनी लाइन में। जैसे इस खूबसूरत गीत के संगीतकार सी अर्जुन भी तो नए नए से थे। सी अर्जुन बड़े हंसमुख बड़े मसखरे सिंधी नौजवान थे और उन्होंने मुझे बड़े मजेदार अंदाज में बताया था कि शुरू में उनके इस नए नाम से कैसी गड़बड़ होने लगी थी।
1: अमीन भाई, जब ये मेरी पहली फिल्म अनाउंस हुई
2: जी,
1: तो कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उनको मेरे नाम पे बहुत एतराज था।
2: अच्छा अच्छा।
1: क्योंकि मैं नया नया आया।
2: हाँ।
1: तो वो कहने लगी ये भाई महमूद इस पिक्चर में है हीरो, फिर शोभा खोटे भी है। हाँ। मगर ये म्यूजिक डायरेक्टर सी अर्जुन कौन है?
2: अच्छा अच्छा।
1: तो उन्हें मेरे नाम पे बहुत एतराज। बेचारा मेरा प्रोड्यूसर, उसकी भी पहली पहली फिल्म। हाँ। वो भी घबरा गया।
2: अच्छा।
1: कि ये अभी पिक्चर शुरू नहीं हुई, इतने में मालूम नहीं ये डिस्ट्रीब्यूटर्स मेरे को क्या बोल रहे हैं। तो वो कहने लगे कि भाई ये म्यूजिक डायरेक्टर कोई बड़ा लियो, ये सी अर्जुन नहीं चलेगा।
2: अरे।
1: तो मेरा प्रोड्यूसर वो भी बहुत होशियार था, उसने कहा देखो भाई ये जो सी अर्जुन है वो सी रामचंद्र का छोटा भाई।
2: सी रामचंद्र का छोटा भाई?
1: जी हाँ। अच्छा। तभी जाके उनको कुछ तसल्ली हुई कि ये म्यूजिक अच्छा दे सकेगा।
2: अच्छा अच्छा।
0: और भाई उस साल छोटे नवाब पंचम भी तो नए थे जो आते ही पहुंच गए 1961 की पायदान नंबर 5

और अब दो और शानदार पायदाने आपके सामने अपने हिट गीतों की झलके लिए। दोनों पायदानों पर जमी थी फिल्म जिस देश में गंगा बहती है। पायदान नंबर 4 पर था राज कपूर का सेल्फ इंट्रोडक्शन।

6 बजे। अब FM अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को संध्याकालीन प्रसारण प्रारंभ हुन्छ। FM अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ संध्याकालीन सेवामा शुभ संध्या।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: FM अध्यात्म ज्योति 104.8।

तराना इत्यादि आप सुनते हैं, वैसा ही ये एक और प्रकार है। इसे चतुरंग कहते हैं, चार अंगों का इसमें समावेश है। राग मिश्र खमाज